0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
4: ټانګ وډی کله نه محمد علی خبره ده سره غانا خو چې زسانګ په وځه راشه ممازوی دی لیوان
5: محمد بشیر روان قربان جانا والا جو زمانہ دان بلنگ

0: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राबता कर सकते हैं 0313 91 27 273।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: بابا چی دازن لپاش مال با موٹر سایکل اخلی؟
3: نبا چه نا، ستا عمر لاده موٹر سایکل ده چلاولو نده کلا چی تلوشی، عمر دی داتلو سکالوشی، لیسنس چی جوڑشی، بیا بدل اخلی ما بچه
2: بابا نو اخیر ولی، او سیراتا ولی ناخلی؟
3: گورا بچه، دیر داسی خلق دی چی بی لیسنس گاڑی چلی، کم چی دیر ده خطری سببو گرزی
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگر لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو

तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकी नशरिया। हमारे साथ रहे।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

प्रोग्राम का दौरानिया होता है वो 1 घंटे का होता है। आज थोड़ा सा मेरे साथ टेक्निकल जो है प्रॉब्लम होने की वजह से जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक और हमारा लैपटॉप जो है हमारा साथ नहीं दे पा रहा, लेकिन हम भरपूर कोशिश में हैं कि प्रोग्राम के किसी हिस्से में मुकम्मल बैकअप के साथ जो है मुकम्मल सेटअप के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे होंगे जनाब, प्रोग्राम डेफिनेटली वही एक कंपनी है केसर नेचुरल पाकिस्तान, और उसी का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर।

सेशन के टी टाइम में आपको वेलकम करते हैं और मेरा आप लोगों के साथ होता है पूरा एक घंटे का, यानी कि अब से लेकर ठीक 5 बजे तक। कैसे नजर पाकिस्तान आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना रही है और ये ढेर सारे प्रोडक्ट आप लोगों के ढेर सारे मसाइल के लिए हैं, आपकी बहुत सारी फिक्रों को ख़त्म करने के लिए हैं और आपकी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हैं। कैसे नजर पाकिस्तान जो कंपनी है वो बेसिकली इस वक्त 3 सेगमेंट्स के अंदर काम कर रही है। 3 पोर्टफोलियो हैं केसन के जिनके मुताबिक हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। नंबर 1 जो है हमारा स्किन केयर है, जिसमें हमारी वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास हैं जिनका ताल्लुक आप लोगों की ब्यूटी के साथ है, आप लोगों की स्किन क्लैरिटी के साथ है, आप लोगों के पिम्पल्स के साथ है, यानी कि चेहरे के आपके जितने भी मसाइल हैं, चेहरे के आपके जितने मसाइल हैं उनको लेकर जो है हम अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आपको छाइयों का मसला है तो आप केसन की जो है मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी केसन नाइट क्रीम है, ठीक है जनाब, केसन ज़ाफ़रानी फार्मूला नाइट क्रीम, और दूसरी हमारी केसन ग्लूटा वाइट क्रीम है। ये दोनों आपकी स्किन क्लैरिटी में काम करती हैं, ठीक है जनाब। ये दोनों क्रीमें आपकी दाग धब्बों को ख़त्म करने में, आपकी स्किन को साफ करने में और आपकी जो पिंपल्स होते हैं उनको वाइप अप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से स्किन के ऊपर वाइटनिंग या फिर आपको ग्लो चाहिए, आप सांवले रंगत से आपको निजात चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारी बहुत बड़ी रेंज है वाइटनिंग की, जैसे कि हमारे पास सोप्स हैं, फेस वॉश हैं, क्रीम है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी स्किन केयर की जो है पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर हाथ और पाँव के लिए भी क्रीमें मौजूद हैं, ठीक है जनाब। एक पाँव का मसला जो है वाइटनिंग का होता है और दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है सामीनी ग्राम क्रैक्स का, यानी कि फटी हुई हाथ पाँव जो होते हैं उनके लिए भी हमारी क्रीम है और बहुत ही प्यारी क्रीम है, बहुत ही रिजल्टफुल क्रीम है, जिसको हम केसन क्रैक रिलीफ क्रीम कहते हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है हमारा वो हेयर केयर का है, यानी कि आपको बालों के मसाइल हैं तो उन हवाले से आप केसन नेचुरल पाकिस्तान के ऑयल और शैम्पू का सहारा लें। और आज के जो प्रोग्राम है वो हमने इसी प्रोडक्ट के ऊपर तरतीब दिया है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम आपने ऑयल और शैम्पू के हवाले से कभी नहीं सुना होगा हमसे, जो आज हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं एक ख़ास किस्म की एज के लोगों के लिए और ख़ास किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए हमारा ऑयल कितना मुफीद है। तो प्रोग्राम को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे हमारे साथ सुनते रहिएगा। तीसरा सेगमेंट हमारा जो है वो हेल्थ का सेगमेंट है, ठीक है जनाब, वो शिफा का सेगमेंट है और उसमें जो कॉमन बीमारियाँ हैं जनाब, जो अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती हैं और जिससे रिलेटेड, इन अमराज से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो और घर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, तो इस हवाले से हमारा ऑयल है जिसे हम कहते हैं कि सबसे ख़ास, सबसे आला और सबसे कीमती तेल है, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच ऑयल, यानी कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किया गया तेल। तो जनाब आप इस ऑयल को इस्तेमाल करके पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द का, पट्ठों के दर्द का, पट्ठों की कमजोरी का इलाज कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तीसरा सेगमेंट हेल्थ के हवाले से और तीसरी प्रोडक्ट जो हमारी है वो है हाजमे के हवाले से, कि अगर हाजमे के मसाइल आप लोगों के हैं तो आप केसन हाजमा कंट्रोल सिर्फ सेरेसिड को यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ मोटापे से निजात के लिए आपको स्लिम एंड स्मार्ट बनाने के लिए केसन वेट कम पेट कम हर्बल फक्की भी मौजूद है। टॉपिक की तरफ जाते हैं जनाब, और आज का टॉपिक क्या है जिसके ऊपर आप लोग बात कर पाएंगे, लेकिन ये तो मैंने सोचा नहीं, आपको टॉपिक तो मैं बता दूं और इसी दौरान कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम, लेकिन आप लोगों ने फीडबैक शेयर कर देना है हमारे साथ, और अगर हमारा सिस्टम बहाल हो गया

ड्यूरिंग घंटे ये जो हमारा शो है, तो फिर आपका फीडबैक भी आप तक जरूर जो है उसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, शामिल कर पाएंगे। ठीक है जनाब, टॉपिक ये है कि आपके ख्याल में क्या किसी को पहचानने के लिए एक मुलाकात काफी होती है, या किसी को पहचानने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है? और अगर बहुत सारा वक्त दरकार होता है तो आप क्या समझते हैं कि कितने वक्त में आप एक अनजान शख्स को, एक अजनबी शख्स को पहचान लेते हैं? हर बंदे के पास एक कसौटी होती है ना, उसी कसौटी के ऊपर, उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर इंसान हर बंदे को जो है पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। और बेसिकली हमारे अंदर जो अपनी खूबियां होती है ना, हम उन्हीं खूबियों के मुताबिक ही अगले बंदे को कसौटी के ऊपर डाल रहे होते हैं कि यार मैं इस वक्त में ये काम करता हूँ, मैं मुश्किल वक्त में लोगों के साथ क्या बिहेवियर करता हूँ, मेरे पास पैसे आए तो मैं क्या करता हूँ। यानी कि हम हर तरीके से अपने जैसा बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो जरूर मुझे बताइएगा जनाब कि आपके ख्याल में किस इंसान को पहचानने के लिए क्या एक मुलाकात काफी होती है, या अगर एक मुलाकात काफी नहीं होती तो आप क्या समझते हैं कि कितने वक्त में आप किसी को मुकम्मल तौर पर पहचान सकते हैं? हमारा नंबर जो है वो आपको मैं अभी नहीं बताता, फिर आप लोगों ने कॉल शुरू कर देनी है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता है तो आप लोगों ने सेव भी कर लिए होंगे, आपके पास हमारा नंबर सेव भी होगा। तो जनाब केसन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हर रोज हम आपको एक मसला बताते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा मसला कोई है तो आप केसन का ऑयल इस्तेमाल करें, आपके मसाइल हल होंगे। बच्चों के अंदर दो बड़े मसले होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है जनाब, तो उनके अंदर दो बड़े मसले होते हैं। एक ये होता है कि सर के ऊपर ना एलोपीशिया, ये एक बीमारी है, ये सिक्के के बराबर के निशानात बन जाते हैं और वो खाली होते हैं, यानी वहां पर बाल नहीं उगते हैं बिल्कुल, बहुत सारे जगहों पर बाल उग जाते हैं लेकिन सर के उस खास हिस्से के ऊपर जो है, बच्चों की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब, कि बच्चों के बालों के जो मसाइल होते हैं वो क्या होते हैं। बड़ों के मसाइल तो आपको पता है कि 3 साल से हम आप लोगों को उंगलियां तोड़ तोड़ के मेरे ख्याल में आप लोगों को बता चुके हैं कि भी बालों के मसाइल मर्दों के कौन से होते हैं और खवातीन के क्या कौन से होते हैं। उसी तरीके से बच्चों के भी मसाइल होते हैं, और बच्चों में ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि सर के किसी हिस्से के ऊपर बाल होते हैं और किसी हिस्से के ऊपर बाल जो है नहीं होते हैं, एलोपीशिया इस बीमारी को कहा जाता है। तो इसमें क्या केसन का जो हेयर ऑयल है वो काम करता है, तो इसका जवाब क्या है? जी बिल्कुल जी, केसन हेयर ऑयल इन अलामात में बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम करता है, और आप इसे यूज करेंगे, यानी कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए कि आप ऑयल को यूज करा सके? पहली बात तो ये है कि 100% नेचुरल हमारा ऑयल है, किसी किस्म के इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, कि बच्चे की सर की जो हसास जिल्द है उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि आप इसे कब से यूज करा सकते हैं? तो जब आपका बच्चा 4 से 6 माह का होना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी उम्र 4 से 6 माह हो जाए, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है जनाब, बिल्कुल बहुत ही सेफ, किसी किस्म की कोई एलर्जी खारिश नहीं करता। अच्छा, एक तो बालों का मसला ये होता है कि सिक्के की बराबर की साइज के जो है जगहों के ऊपर बाल नहीं होते हैं बच्चों के, ठीक है जनाब। इस बीमारी में आप ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, पूरे सर के ऊपर इस्तेमाल करें कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसी जगह के ऊपर इस्तेमाल करें कोई इशू नहीं है, उन्हीं जगहों के ऊपर फिर से बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जनाब, आप जब इसे इस्तेमाल कराएंगे। एक ये मसला। दूसरा मसला जो होता है, पैदाइशी तौर पर बच्चों के जो है सर के ऊपर जो है खारिश और एलर्जी और इस तरह की अलामत होते हैं, रेडनेस होती है सर के ऊपर, तो इस सूरत हाल में भी आप बच्चों को हमारा हेयर ऑयल जो है, केसन हेयर ऑयल, इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और केसन का जो हेयर ऑयल है, आप मुख्तलिफ किस्म के ऑयल इस्तेमाल कर रहे होंगे ना अपने घरों के अंदर, तो कभी आप ऐसा करें कि उस ऑयल की जो फहरिस्त है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये चीज मौजूद है, इसके अंदर ये चीज मौजूद है, तो आप कंपैरिजन करें केसन के हेयर ऑयल के साथ। जब आप केसन हेयर ऑयल के साथ मिलाएंगे कि भाई उसके अंदर कितनी चीजें हैं और इसके अंदर कितनी चीजें हैं, तो पहले तो आपको पता चल जाएगा कि भाई केसन के ऑयल के अंदर तो 17 चीजें हैं और बाकी तेलों के अंदर 7-8 चीजें,
लेकिन मजे की बात है कि जितनी चीजें जिस भी ऑयल के अंदर मौजूद होंगी वो केसन के अंदर मौजूद हैं। इट्स मीन कि अगर कोई ऑयल आपको फायदा पहुंचा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो जो फायदा आपको पहुंच रहा है ना, वो आपको केसन हेयर ऑयल भी पहुंचाएगा, क्योंकि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सब की सब केसन के हेयर ऑयल के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा 7-8 एक्स्ट्रा भी चीजें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑयल को स्किप करने से या अपने ऑयल को छोड़ने से आपकी स्किन के अंदर एक फर्क आएगा, और वो बेहतरी का फर्क आएगा, क्योंकि आप पहले जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर जितने भी अज्जा थे वो सारे के सारे केसन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इसके अंदर तो कुछ और भी है जो मैं पहले ऑयल इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि उसके अंदर टोटल जो है 7-8 चीजें थी, 7-8 अज्जा थे, और केसन के ऑयल के अंदर 17 अज्जा है। तो इट्स मीन के जो चीजें आप लगा रहे थे वो तो ऑलरेडी केसन के अंदर मौजूद है। तो ये तो आप जहन के अंदर सोचें भी नहीं कि कोई और आप लगा रहे हैं और उसको अगर आप चेंज करेंगे तो कोई आपकी स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर असर आएगा। असर जरूर आएगा, वो बुरा असर नहीं होगा, वो अच्छा असर होगा जो आपके सामने आएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जहन के अंदर ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, इसके अगर आप ये जो ऑयल है हमारा, ये सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ठीक है ना, बालों का तो ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है जनाब, जो बालों के प्रॉब्लम है उनका तो ये बिल्कुल स्पेशलिस्ट है और आपके सारे मसाइल को हल करता है, लेकिन उसके बहुत सारे और फायदे हैं। यानी कि जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं एलोपेशिया और टीका, इस बीमारी में आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो जो गैप होंगे बालों सर के ऊपर वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। दूसरी बात, अगर पैदाइशी बच्चों के ऊपर एलर्जी या खारिश का कोई ऐसा सीन है, इसे इस्तेमाल करेंगे वो मसला बिल्कुल इस ऑयल के साथ खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं और बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइशी तौर पर उनके बाल घने नहीं होते हैं, उनके बाल बड़े ही पतले होते हैं। यही बच्चियां कि इनका जब वालदैन ख्याल नहीं करते हैं, अब ये ऐसी उम्र होती है, छोटी उम्र 3-4 साल की उम्र, ठीक है जनाब, जिसके अंदर बच्चों को तो अपनी केयर का नहीं पता होता, ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी कौन सी केयर करनी है, वालदैन ने, पेरेंट्स ने, माँ ने जो उसकी जो है खिदमत करनी है और उसकी जो केयर करनी है वो बस वही केयर होती है। तो ऐसी माएँ जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं बहुत सारी, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाकर जो है शादी करनी है और माएँ उन्होंने बनना है, तो ये देखिए कि आपका जो बच्चा पैदा होता है, कुछ बच्चों के बाल बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, ठीक है जनाब, उनकी वजह क्या होती है कि उसकी उनकी जो वालदा होती है उसकी डाइट बड़ी अच्छी थी, ठीक है, उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें खाई हैं, ठीक है जनाब, और उसने प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो ख्याल ट्रांसफ़र होता है बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां, पॉजिटिव तब्दीलियां आती हैं। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ जो है वो मुतवाजन खुराक लेती है, ऐसी खुराक जिसके अंदर आयरन हो, ऐसी खुराक जिसके अंदर प्रोटीन हो, ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें, यानी कि एक मुतवाजन बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं तो उसका फायदा क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं जनाब, कि वो आपके बच्चे को होता है। अब कुछ माएँ खुराक सही नहीं ले पाती तो उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके सर के ऊपर बालों का बहुत बड़ा मसला होता है। मसला ये होता है कि उनकी क्या बोलते हैं इसको, कि बाल पतले होंगे, ठीक है जनाब, पतले कॉल्स अभी ना करें आप लोग, मुझे थोड़ी सी बातें बताने दें, अभी तो 15 मिनट हुए हैं, कहानी तो अभी बहुत सारी तवील पड़ी है, तो थोड़ी सी आप मेहरबानी करें, आप लोगों का टाइम होता है बिल्कुल आधा घंटा पूरा हम आप लोगों को देते हैं, और जब तक आप हमारी बातें सुनेंगे नहीं भाई, हम तो वो कंपनी है कि हम लोगों को दिमाग पका देते हैं लोगों के, ठीक है जनाब, एक एक चीज हम आपके गोश गुजार करते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई ये बीमारी इसकी वजह क्या है और इसका तदारक क्या है, इसको कैसे आप हमारी प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों में इनिशियली जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होता है, बालों की ग्रोथ का मसला होता है, यानी कि बाल निकल भी नहीं रहे होते और बाज़ोकात पैदा होते ही वो गिर रहे होते हैं और फिर उस जगह नए बाल भी नहीं उगते हैं, ठीक है जनाब, तो ऐसी बच्चियों के लिए बड़ा मसला होता है। और ये बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनके बाल ऐसे ही रह जाते हैं अगर उनकी केयर ना की जाए। मुझे वो लड़की आज भी कल की तरह याद है, एक फीमेल थी मेरे ख्याल में शोरकोट की तरफ से आई और वो स्पेशल जो है मिठाई लेकर आई हमारी शॉप के ऊपर, और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी ये वो स्पेशल उसे हमारी केसन शॉप के ऊपर लेकर आई थी,
मिठाई के डब्बे के साथ और उसको साथ में लेकर आई कि भाई हमने आपके आयल के बारे में सुना था जब ये बच्ची पैदा हुई थी, बल्कि बच्ची पैदे क्या हुई, ये 2 साल की हो गई थी, 3 साल की हो गई थी, लेकिन इसके बाल बिल्कुल नहीं निकल रहे थे और हम इतने परेशान हो गए कि ये लड़की है और इसके बालों का क्यों इतना बड़ा इश्यू है। तो जब हमें किसी ने बताया तो आई थिंक जब वो हमारे पास पहुंची तो वो 5 या 6 साल की होगी, लेकिन उसके जो बाल थे ना, उसकी अम्मी ने ऐसे दुपट्टा हटाकर मुझे दिखाया कि ये देखें इसके कमर तक आ गए और ये आयल के इस्तेमाल करने से। तो भाई ऐसे तमाम लोग, माएं जो मुझे सुन रही हैं जिनके बच्चियों के बाल कमजोर हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि उम्र कम है तो क्या इस कम उम्र के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो भाई जरूर कर सकते हैं। केसन इस वक्त मास्टर पीस है हेयर केयर ट्रीटमेंट में। इस वक्त अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हर दुकानदार बताएगा कि बालों की ट्रीटमेंट के लिए, बालों की निगहदाश्त के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बालों को घना करने के लिए, बालों को चमकदार बनाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, अगर कोई इस वक्त जो है कामयाब तरीन जो प्रोडक्ट है तो वो केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू है। ठीक है जनाब, तो आप अपने बच्चों को जरूर यूज करवाइए और आपके बच्चों की जो मसाइल हैं, ठीक है जनाब, स्पेशली जो बालों के हवाले से हैं, जरूर उनको इस अपने घर में केसन का हेयर ऑयल रखिए और ये एक बहुत ही मुफीद चीज है। अच्छा, आपको कोई मसला नहीं है, 2 बड़े मसले होते हैं, एक वक्त से पहले बालों का सफेद हो जाना और एक होता है वक्त से पहले बालों का गिर जाना। अब ये 2 ऐसे मामलात हैं जो अगर उम्र से पहले हो जाए ना तो बड़े बुरे लगते हैं, बंदा बड़ा शर्मिंदा होता है यार। ये दोनों मामलात शर्मिंदगी पैदा करने वाले हैं जब वक्त से पहले ये आपके ऊपर नाजिल हो जाए। यानी आपकी उम्र है अभी जनाब 20-22 साल और आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए, ठीक है जनाब। उम्र है आपकी 25 साल और आपके बाल गिरना शुरू हो गए, अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी साइडें जो है खाली हो गई हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है जी। कुछ लोग कब इलाज करते हैं, जब बीमारी आन पड़ती है। ये जो हेयर फॉल है ये बीमारी है, ठीक है जनाब, हेयर फॉल बजाते खुद एक बीमारी। अब इसको आने से क्या रोक सकते हैं आप? बिल्कुल जी रोक सकते हैं, जब आप अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे, जब आप ऐसी चीजें लेंगे जो आपके बालों को जरूरत है, तो कभी आपके बाल वक्त से पहले सफेद नहीं होंगे, वक्त से पहले आपके बाल गिरेंगे भी नहीं, ठीक है जनाब। आज लैपटॉप जो है वो मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा और आज इसने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं इसके साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि खलील मियां मुझे तो आज छोड़ ही दो, ठीक है जनाब। आप चाय पियो, लोगों को अपनी मीठी मीठी बातें सुनाओ चाय के साथ। तो भाई पाड़पुर वालों, डेर इस्माइल खान वालों और टांक वालों, मेरे साथ आज क्या तीनों एफएम अटैच हैं, क्या स्टेटस है तीनों का? मुझे आज 2 का स्टेटस शो हो रहा है और अगर कहीं गड़बड़ होगी तो मेरे ख्याल में डेर इस्माइल खान में गड़बड़ होगी कि वहां पर मुझे नहीं सुना जा रहा होगा। एनी हो, देखते हैं कि क्या कौन सा रेडियो स्टेशन हमारे साथ आज इन टच नहीं है, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा सा ब्लाइंड हूँ, मेरा सिस्टम सारा जो है वो ओने पोने हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि आज कौन सा रेडियो मेरे साथ अटैच है कौन सा नहीं है। एनी हो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अपने इलाके के रेडियो स्टेशन, अगर मेरी आवाज़ आपको ग्लोबल एफ एम 91 पर आ रही है तो डेफिनेटली आप लाइव सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम, इसी तरीके से पाड़पुर में रेडियो पैगाम और टांक में रेडियो अमन, अमन रेडियो से आप मुझे सुन रहे होंगे। इन तमाम इलाकों के अंदर हमारी ये प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं केसन हेयर ऑयल, ये तेल नहीं सोना है, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं और मैं आपको बार बार बताऊंगा ये बात कि ये जब हम ऑयल बना रहे थे तो हमने भी इस ऑयल को 7 चीजों से मिलके बनाया था, ठीक है जनाब, क्योंकि हमने मार्केट की थी, पूरे मार्केट पूरे पाकिस्तान का विजिट किया, भाई कौन सी कंपनी कौन सा तेल बना रही है, किस तरीके से बना रही है, क्या क्या डाल के दे रही है, हैं जी मिठा कितना डाल रही है। तो हमने ये चीज नोट की कि हमने मिठा सबसे ज्यादा डालना है अपने ऑयल के अंदर, हैं जी मिठा तेज रखा है हमने इस ऑयल के अंदर, चीनी वाला मिठा नहीं भाई, ऐसे समझ लोगे कि भाई ये तो फिर चिपका चिपका सा ऑयल होगा अगर इन्होंने चीनी डाल ली है अपने तेल के अंदर, कोई नींद डाली, मीठे का मतलब होता है कि रिजल्ट वाली चीजें ज्यादा डाली हमने इसके अंदर, मीठा तेज किया इसको दूसरों से निस्बत जो हमने कंपेरेटिवली मार्केट की थी, कि लोग जो है कंपनियां जो है लोगों को कौन सा ऑयल बना के दे रही हैं और हम मुख्तलिफ बना के देंगे। तो करते करते जनाब 13 से 17 अज़ा पर पहुंचे हैं। अगर इस वक्त आपके घर के अंदर ये रेड वाला ऑयल नहीं है, ये अनार की तरह हमारा, जिस तरह अनार का शरबत होता है ना रेड कलर का, तो उसी तरीके से ये इसका कलर है। और ये रेड कलर क्यों है, क्यों है, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफा एक दुकानदार हमारे पास आया, अमान आर सेरे वाला,
तो उसने कहा यार ना वो कस्टमर हमारे पास कैंट से हैं, कोई बहुत बड़ी फैमिली है, और वो कहती हैं कि पहले जो इनका ऑयल आता था उससे जब बंदा नहाता था तो वॉशरूम थोड़ा रेड रेड हो जाता, झाग रेड हो जाती थी, ऑयल के अंदर इतना रेडनेस होती थी कि झाग भी रेड हो जाती थी ना, अभी उस तरीके से रेड नहीं होता बिल्कुल। तो कहते क्यों इन्होंने तब्दील किया है, तो हमने कहा भाई कोई ऐसी तब्दीली नहीं की गई है, ठीक है जनाब, ये बेसिकली इसके अंदर

थोड़ा सा जो है ब्राउन कलर का होगा, इस तरह ट्रांसपेरेंट अनार की जूस की तरह रेड, किसी के घर में भी नहीं पड़ा होगा जो हमारा ऑयल यूज नहीं करते हैं। जो करते हैं तो वो तो अभी उठा के अपने हाथ में बैठे होंगे, भई अनारी हेयर ऑयल तो हमारे हाथ में है जी, तो रेड कलर का क्यों है, बात कहीं और चली गई है। लेकिन ये रेड कलर सामने आ जाता है, यानी कि जैसे ही ये रेड कलर का क्यों है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हिबिस्कस। ये अभी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने, फिर गूगल में तो हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस। ये बेसिकली एक फूल है और इसका पाउडर जो होता है वो हमारे ऑयल के अंदर शामिल होता है। पुराने वक्तों के अंदर जब हेयर कलर नहीं होते थे, ठीक है जनाब, यानी कि बालों को कलर करने वाली कोई चीज नहीं होती थी, तो लोग इसी फूल को जो ना सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके लगाते थे, बालों का कलर अच्छा हो जाता था। एक फायदा ये है। दूसरा, ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। अब जो लोग हमारा ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, जो भी केसन हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अभी अगर आप अपने आईने के सामने जाए ना, ड्रेसिंग के सामने जाए और थोड़ा सा ऐसा सर को झुका के देखे ना, तो आपको जो आपके सर की ढलवान है ना, जहां से बाल नीचे गिर रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, जिस तरह ढलवान होती है, तो आपको वहां पर एक जबरदस्त किस्म की चमक नजर आएगी। ये चमक जो आपके बालों के अंदर आती है ना, ये इसी फूल हाइबिस्कस जो है ना, जिन्स पटो जिसको हम कहते हैं, ये इसी की वजह से आती है, क्योंकि ये कंडीशनर का काम करते हैं। दूसरा, ये आपके बालों को कलर अच्छा करता है। यही वजह है कि केसन हेयर ऑयल के हवाले से हम ये कहते हैं कि जब आप इस्तेमाल इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बालों का कलर इतना डार्क हो जाएगा ना कि लोग आपसे कहेंगे कि कौन सा कलर लगा रहे हो, यानी कि ये आपके बालों के कलर को डार्क करेगा। जो मध्यम हो चुका है, जो डिम हो चुका है आपके बालों का कलर, जब आप केसन हेयर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का कलर जो है वो बिल्कुल डार्क होना शुरू हो जाता है। कैसे डार्क होगा, किस तरह होगा, इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। दो तरह के बाल होते हैं, ठीक है जनाब। एक होते हैं जनाब ब्लैक कलर का लोगों के बाल होते हैं, कुछ लोगों के जो ना भूरे और लाइट ब्राउन कलर के शेड होता है। अक्सर ये दो शेड आपको मिलते हैं। और ये कैसे डार्क होंगे, जब आप यूज करेंगे हमारा ऑयल, अगर आपके बाल ब्राउन टाइप हैं, गोल्डन टाइप हैं, ठीक है ना, तो वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपके लाइट ब्लैक हैं, ठीक है ना, काले उस तरह की में कहते हैं ना, काले शमोर नहीं है ना अगर आपके, तो बिल्कुल इसको जब लगाएंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे आपके बाल। यानी कि ये आपके बालों के ऊपर कलर इफेक्ट जो देता है वो बहुत अमेजिंग है इस ऑयल का। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चों के बालों को अच्छा, जिस भी बच्ची को आप इस ऑयल को उसके बालों का पहला प्यार बनाएंगे ना, जिस भी बच्चों के बच्ची के बालों का आप केसन हेयर ऑयल को पहला प्यार बनाएंगे, तो आप देखेंगी कि जनाब उसके बालों की खूबसूरती किस कदर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होगी। बीच में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, क्या वक्त से पहले ये जो दो मसले होते हैं कि वक्त से पहले बालों का सफेद हो जाना और वक्त से पहले बालों का गिर जाना, तो इनको अगर आप ये समझते हैं कि यार ये दोनों जो स्टेजेस है ना मेरी जिंदगी में ना आए कभी भी, अगर आप इस चीज से डरते हैं कि आप ये समझते हैं कि भाई ये बड़ी शर्मिंदगी वाली स्टेजेस होती हैं कि जनाब जिसमें वक्त से पहले आपके बाल गिर जाएं या वक्त से पहले जो है आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएं, तो इन स्टेजेस से आने से पहले आप डेली लाइफ में रूटीन में केसन हेयर ऑयल को घर में ले आएं। हम आपको गारंटी देते हैं अगर ये स्टेज आपके ऊपर अभी तक नहीं आई है, ये दो स्टेजें, वक्त से पहले बालों को सफेद होना और वक्त से पहले बालों का गिरना, अगर ये दो मरहले अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए और आप ये चाहते हैं कि आगे भी ये ना आए, तो आप केसन हेयर ऑयल को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ऑयलिंग करें, ठीक है जनाब, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ऑयलिंग करें और बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये दो मरहले आपकी जिंदगी में आगे कभी नहीं आएंगे, एक वक्त से पहले बालों का गिरना और दूसरा वक्त से पहले बालों को सफेद होना। क्योंकि जनाब ये दो प्रॉब्लम जिन वजूहात की बिना पर होते हैं वक्त से पहले, उन तमाम प्रॉब्लम्स का तदारक, उन तमाम मसाइल का हल जो है वो केसन हेयर ऑयल के अंदर जड़ी बूटियों की सूरत में मौजूद है। और ये 17 अज़ा जिसके अंदर 9
जो है ऑयल मौजूद है, एक इसके अंदर एसेंशियल ऑयल है और इसके अंदर 7 जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां हैं। 17 अज्जा का ये मिलाप जब आप अप्लाई करेंगे, चाहे आपके घर में 6 माह का बच्चा है या 70 साल का बूढ़ा है, वो आपके अपने बालों के अंदर एक जान महसूस करेगा, क्योंकि जनाब ये एक प्रॉपर डोज है आपके बालों के लिए, आपके बालों को प्यारा बनाने के लिए, आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और आपकी खुश्की और ख़ारिश को रोकने के लिए। ठीक है जनाब, ये बेसिकली ऑयल आपके बालों के लिए है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर ये मौजूद है और अगर कोई ऐसा बंदा जिसको शदीद किस्म के सर में दर्द रहता है या हो गया है, आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द है, इसके अंदर 3 ऑयल ऐसे हैं सामिन इकराम, केसन हेयर ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, 3 ऑयल ऐसे हैं जो पेन किलर का काम करते हैं। कौन से ऑयल? नंबर 1 जैतून का तेल, नंबर 2 रोजमेरी का तेल और नंबर 3 तिलों का तेल। आप अगर आपका आपको कोई चोट आए और आपकी हड्डी वगैरह टूट जाए और आप किसी जरा के पास अगर जाए ना, तो जरा आपको पट्टी करने के बाद ना एक तेल देता है, ठीक है जनाब, और वो कहता है कि भाई इस तेल की ना मालिश करो आप, ठीक है, इसकी 2-3 दफा आपने इसको मालिश करनी है। तो वो कौन सा तेल होता है? वो जैतून का तेल होता है। तो एक दफा एक जरा है हमारे जानने वाले, तो उनको मैंने ये बात जाके बोली, तो मैंने उनको कहा कि आप देखें ये तेल रिकमेंड करते हैं, उसके ऊपर वो डिफरेंट कंपनियों का नाम लिखा होता है, होता जैतून का तेल ही है। तो मैंने उसे बताया कि ये ट्रिपल फायदा देगा आपके मरीज को, अगर जैतून से तेल लगाने से अगर जो है मरीज को क्या कहते हैं वक्ती तौर पर आराम आता है थोड़ी देर के लिए, तो इससे 3 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि जैतून के साथ जो है इसमें रोजमेरी ऑयल और इसके साथ साथ जो है तिलों का तेल भी है, ये तीनों पेन किलर है। तो उसने उसी दिन से ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं भाई, वो उन्होंने हमसे ऑयल मंगवा लेते हैं और अपनी छोटी छोटी उन्होंने बोतलें बना ली हैं और मेरे ख्याल में 500 की एक बोतल भेजते हैं और जो भी उनके पास ऐसा आता है, तो तब से वो हमारा ही ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। तो ये बेसिकली दर्द को खत्म करने के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है, स्पेशली जो सर का दर्द होता है, चूंकि आप पूरे सर के ऊपर तेल लगाते हैं ना, तो आपका मसला बहुत जल्दी हल हो जाता है। ठीक है जनाब, हमारे पास बहुत सारे, यकीन करें, हमारे जो कस्टमर हैं केसन के, उसमें से बहुत सारी खवातीन आती हैं और हमें ये बताती हैं कि भाई हम इसे ले तो गए थे बालों के लिए, लेकिन ये तो सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो हम आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा मसला, ये हेल्थ का प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को सर का दर्द रहता है भाई, आप इस चीज़ को, एक फीमेल थी हमारे साथ 91 पर आती थी, नाम मुझे भूल गया उनका, और वो कहती थी कि मेरे सर में इतना दर्द होता था कि मैं दिन में 6-6 गोलियां खाती थी पेनाडोल की, 6-6 गोलियां खाती थी और दर्द नहीं जाता था, लेकिन जब से इस ऑयल को इस्तेमाल किया वो दर्द तो कहीं खत्म ही हो गया, अब तो वो बस याद ही नहीं रहता कि कभी एक दौर था कि मुझे 6-6 गोलियां खानी पड़ती थी पेनाडोल की, तब जाके सर में सर का दर्द जाता था। तो नेचुरल वे पर इसके अंदर 3 पेन किलर हैं, ये हमारा जो हेयर ऑयल है, जैतून का तेल, तिलों का तेल और साथ में रोजमेरी ऑयल, तो ये फौरी तौर पर आपके दर्द को खत्म कर देता है, सर के दर्द को। एक ये मसला। दूसरा मसला, ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती रात को और वो नींद की या नशावर गोलियां लेते हैं, एल्प्रोजलाम टाइप, एल्प टाइप, इस तरह के जो है ना जो आपको मिलते हैं फार्मूले, इनको इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको एडिक्शन हो जाती है, ये जो नशावर चीज़ें होती हैं ना, ये आपको आदि कर देती हैं और इनकी मिकदार फिर आपको बढ़ानी पड़ती है। एक मिकदार अगर आपने 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट ले ली, तो कुछ अरसे बाद आपको उससे नींद नहीं आएगी, फिर आप 1 मिलीग्राम की तरफ जाएंगे, फिर कुछ अरसा आप 5-6 महीने आपकी नींद 1 मिलीग्राम से कवर रहेगी, फिर आप 2 मिलीग्राम लेंगे तब जाके आपको नींद आएगी। ये एडिक्शन होती है, न्यूरॉन की जो रफ्तार होती है, ये मेडिसिन जो होती है उसको तेज कर देती है, उसको बढ़ा देती है, लेकिन वक्त के साथ वो उसे इनसफिशियंट महसूस होती है, ट्रिगर करने के लिए मेडिसिन की जो तादाद मिकदार होती है वो इनसफिशियंट महसूस होती है, जिसकी वजह से आपको उसकी 2 गुना 3 गुना 4 गुना और 5 गुना जो है मिकदार बढ़ानी पड़ती है। नशावर जितनी भी चीजें होती हैं वो एक जैसी उनकी मिकदार नहीं रहती है। तो भाई ऐसे लोग इन नशावर या नींद वाली गोलियों से निजात हासिल कर सकते हैं अगर वो रात को सोते वक्त जो है
इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको वो स्टोरीज भी सुना रहा हूँ साथ साथ में ना, जो पीछे लोगों ने हमें इस हवाले से बताई। तो हमारे एक लिसनर थे, शहजाद बलोच नाम था उनका, और अभी भी होंगे 91 को अगर सुन रहे हैं, तो वो कहते थे कि जनाब मुझे ना नींद नहीं आती थी और मैं आधी आधी रात को ऐसे लेटा पड़ा होता था, लेकिन जिस दिन साहब ने बताया कि भाई ये तो रात को इसकी रगड़ाई करो तो मीठी नींद आती है, तो कहते हैं कि यकीन करें जैसे मैंने इसको शुरू किया ना, तो जैसे मेरी अम्मी मुझे मालिश करके देती थी, तो मैं ऐसे मोबाइल यूज कर रहा होता था मालिश कराने के बाद, यानी कि जैसे मालिश करा के अपने इस पर बिस्तर पर आता था, तो ऐसे मेरे हाथ में मोबाइल होता तो गिर जाता था, मोबाइल मेरे हाथ से गिर जाता था, इतनी शदीद किस्म की नींद आती थी। और फिर कहते थे कि फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी जान आप भी इसे इस्तेमाल किया करें ना, इससे बड़ी अच्छी मीठी नींद आती है। तो कहते हैं कि दो दिन मेरी अम्मी की फजर की नमाज कजा हो गई। क्या कह रही थी कि मेरी आंख भी अब नहीं खुलती, यानी कि मैं इसको मालिश करके जैसे सोती हूँ तो इतनी इतनी कोई अमेजिंग मीठी नींद आती है, सुकून वाली नींद, के फजर की अजान के लिए उठना भी, नमाज के लिए उठना मेरे लिए। तो कहते उसने लगाना छोड़ दिया कि मैं दिन को लगाऊंगी, रात को नहीं लगाती, ठीक है जनाब, और जो है ना फिर दिन को नींद पूरी करेंगे, रात को मेरी फजर की नमाज रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये 17 अज्जा से बना हुआ ऑयल है इसके। अच्छा जी, ये तो आज की दो मैंने बता दी। इसको अगर आपको बवासीर का मसला है तो बैरूनी तौर पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट है, जलन खारिश वगैरह फौरी तौर पर खत्म होती है। जो बवासीर के मरीज हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि 17 इंग्रेडिएंट्स अज़ा इसके अंदर मौजूद हैं, तो तमाम तर जो जिस्मानी बीमारियां हैं बैरूनी तौर पर उनको ये कवर करने के लिए, बेसिकली अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको खारिश हो जाए, यानी कि ये बाज़ुकात कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना ये आपको काट लेते हैं, और इनके काटने से जो है ना फौरी तौर पर रिएक्शन होता है और आपके जिस्म के ऊपर सुर्खी माइल दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, और पूरे जिस्म को आप ऐसे खारिश कर रहे होते हैं और पूरा जिस्म रेड रेड हो चुका होता है। तो आप इसको लगाएं, जैसे कि चींटियां होती हैं या इस तरह के छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये आपको बाइट कर लेते हैं, जहरीले होते हैं और जहर मुंतकिल कर देते हैं आपके बॉडी के अंदर, और फिर उसके बाद जो है खारिश शुरू हो जाती है, स्कैबीज आ जाते हैं, स्कैबीज अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं और पूरे जिस्म के अंदर जो है ये एक अफजाई शुरू हो जाती है खारिश की। तो जैसे ही इस तरह का कोई कीड़ा कोई भी अशरात आपको काटता है, आप फौरी तौर पर ये ऑयल लगाएं उसी जगह के ऊपर, वहां से आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये इतना जबरदस्त एंटीसेप्टिक है कि उन जरासीम को, उन उस इन्फेक्शन को उसी जगह पर खत्म कर देगा, ठीक है जनाब। ये मैं आपको किसी मेडिकल लोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मेडिकल इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि केसन के हेयर ऑयल की बात कर रहा हूँ कि इतना प्यारा ऑयल, और इसके इसका स्लोगन है ना, ये तेल नहीं सोना है, ये तेल नहीं सोना है। इसका मतलब ये कि बहुत ही कीमती तेल है भाई, इसको लगाने की देर है, और ये बालों का स्पेशलिस्ट है, लेकिन आपके घर में जब ये पड़ा होगा तो इतने सारे मसले जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फौरी तौर पर रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई हशरात, कोई इस तरह का कीड़ा मकोड़ा, चींटी वगैरह या कोई इस तरह की कोई और चीज काट लेती है जिसके बाद फौरन आपको रिएक्शन होकर आपका जिस्म जो है खारिश शुरू कर देते हैं, तो फौरन ये ऑयल लगाएं, फौरन उसी वक्त जो है आप आराम महसूस करेंगे, उसी वक्त, विद इन नो मिनट्स, ठीक है जनाब, विद इन नो टाइम, बस लगाने की देर है, उसके बाद आके देखेंगे कि आपकी खारिश एलर्जी किस तरीके से खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा और किन अमराज के लिए हमारा ये केसन का हेयर ऑयल है, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है जनाब, कुछ बच्चे जो होते हैं ना पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, आपको कार्ड के ऊपर लिखा हुआ भी आता है स्कूल से कि बच्चे के ऊपर तवज्जो दें, आपका बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा जो है इसकी तवज्जो नहीं होती है, ठीक है जनाब, इसका दिमाग कहाँ घूम रहा होता है। तो आप अपनी निगरानी में ऐसे बच्चों को, मैं आज अम्माओं से जो है मुखातिब हूँ, तो बच्चियों के लिए स्पेशली तो ये ऑयल कितना जबरदस्त है, कितना ही जबरदस्त है। यानी कि आप स्कूल गोइंग आपके बच्चे हैं, आप हफ्ते में 3 दिन अगर उनकी ऑयलिंग करवाएंगे, तो ये नहीं है कि आप उनके बालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ उनके बालों को खूबसूरत बना रहे हैं, बल्कि आप उनके जो माइंड के लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स है उनका, ठीक है जनाब, जो इंटेलिजेंस है आप उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है जनाब, क्योंकि ये मकवी दिमाग तेल है, बादाम जैसे खूबसूरत, बादाम जैसा ताकतवर तेल जो है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जनाब। इसके अलावा जैतून
कलवंजी, ये सारे वो चीजें हैं जो दिमाग को ताकत देती हैं, मकवी दिमाग है। ठीक है जनाब। तो जब ऑयल, मुख्तसर ये कि जिस भी बंदे को आप ये ऑयल लगवाएंगे भाई, उसके फायदे ही फायदे हैं। ठीक है जनाब, वारे न्यारे हैं उसके। जिसने भी ऑयल शुरू किया वो इस्तेमाल तो करेगा इसे अपने बालों को लंबा घना करने के लिए, लेकिन जो साथ में दूसरे इसके एडवांटेजेस हैं वो जबरदस्त हैं, कि जहनी सलाहियत, सोचने की सलाहियत, आगे बढ़ने की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत जो होती है, ठीक है ना, या फिर पीक करने की सलाहियत जो है, ये तेल बढ़ाता है, ये मकवी दिमाग है, आपके खुश्क दिमाग को तर करता है और आपके जो इंटेलिजेंस है, जो जहानत है, उसको मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, मजीद आपको जहीन बनाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बुजुर्ग हजरात के उम्र के तकाजे के साथ, एक बहुत बड़ा मसला जो उनके साथ होता है वो लॉस ऑफ मेमोरी का होता है। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि चीजों को रख के भूल जाना, आपने चीज चाबी कहाँ रखी थी, फिर आधा घंटा सोचेंगे कहाँ रखी थी कहाँ रखी थी, अच्छा जी परफ्यूम की बॉटल किधर पड़ी है, ठीक है जनाब चार्जर मैंने कहाँ रखा, यानी कि ऐसी बहुत सारी बातें जो आप भूल जाते हैं। ठीक है जनाब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत अरसे बाद आपको मिला और आप सोचने लग गए, यार ये कौन बंदा है, इसका नाम क्या है। नहीं, बंदे को तो आप पहचान जाते हैं लेकिन नाम जहन में नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है जनाब, याददाश्त का कम होना, आपका जहनी जो डेटा मौजूद है ना, वो कहीं ना कहीं वो उसको जंग लग रहा है, खुश्की की वजह से ना उस डेटे को जंग लग रहा है। तो उस जंग को आप कैसे तर करेंगे, कैसे आप अपने आप को इस बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि मेडिसिन से आया हूं, ठीक है जनाब, मेडिसिन की फील्ड से मैं 14 साल गुजार के आया हूं, वहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एज ए सीनियर काम करके आया हूँ, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई सारा कुछ। तो इस वक्त याददाश्त को बढ़ाने की एक सिरप मिलता है, शायद आपके घरों में मौजूद हो, जिन लोगों को ये मसला हो तो उसका फार्मूला होगा जिंको बायलोबा, जिंको बायलोबा एक्सट्रैक्ट। ठीक है जनाब, ये एक सिरप है, ये एक खास किस्म का दरख्त है, जिंको बायलोबा नाम से आपको पता चल रहा होगा ना, ये चाइना का दरख्त है, उसके पत्ते का जो अर्क होता है उसे दवा की सूरत में कंपनियां बनाती हैं और लोग उसको पीते हैं, उससे ये सारे मसले हल होते हैं जो मैं आपको बता रहा ना, कि केसन हेयर ऑयल के लगाने से ये मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, ये इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जो है ये बेहतर होगा, ये लॉस ऑफ मेमोरी जो है, यानी कि वो सिरप इस वक्त 1500 रुपए का है। ठीक है जनाब, वो जो सिरप है जिंको बायलोबा का, वो 1500 रुपए का है, 1500 रुपए का, अगर इन मसाइल के लिए, आसाबी कमजोरी के लिए भी होता है, ठीक है जनाब, लेकिन जहनी नशोनुमा के लिए वो बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं ना जहन को तरोताजा रखने के लिए, जहन की इम्प्रूवमेंट के लिए, चाकू चुबंद रहने के लिए दिमाग को, तो आप एक दफा इस ऑयल को इसलिए इस्तेमाल करें कि भाई आपको जहनी सलाहियत आपकी बढ़े, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़े, भूलने की आदत आपको कम हो, आपको मीठी प्यारी नींद आए। तो भाई केसन का जो हेयर ऑयल है ना, गमाल की चीज है, एक इतना परफेक्ट ब्लेंड है यार, इतना परफेक्ट ब्लेंड, आपने कभी तक किसी हेयर ऑयल के अंदर ऐसी खूबियां नहीं देखी होंगी, कि जो तेल आपके हेयर फॉल को रोकता है, जो आपकी खुश्की को खत्म करता है, जो आपके बालों का कलर डार्क करता है, ठीक है ना, जो आपके बालों को स्ट्रेट करता है, जो आपके बालों को चमकदार बनाता है, स्याह करता है, ठीक है जनाब, उसके साथ साथ आपके बालों को हेल्दी करता है, यानी कि बालों के अंदर एक जान सी डालता है, इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स जो मैंने आपको हेल्थ के हवाले से बताए, कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोते वक्त इसके मालिश करके सोएं, अगर आपको एलर्जी खारिश का मसला है, आपको जो है बवासीर का मसला है, आप बैरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इसके अलावा छोटे बच्चों में जहां पर बालों की ग्रोथ का इशू हो, वहां पर आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये ऑयल और अमेजिंग किस्म के बेनिफिट्स के, ये आपको मिलेगा कहाँ, इसकी कीमत कितनी है, इतने सारी जब खूबियां, एक इसको महंगा भी होना चाहिए, तो होनी चाहिए, तो पैकिंग जो हमारी ऑयल की है ना वो मार्केट को महंगा भी होना चाहिए, तो होनी चाहिए, तो पैकिंग जो हमारी ऑयल की है ना वो मार्केट में किससे पहली बात, सबसे पहली बात जो है इसकी पैकेजिंग, जब आप देखेंगे ये जो ऑयल है ना, आपने आज तक जितने भी ऑयल इस्तेमाल किए होंगे
वो चार कोनों वाली डब्बी होगी, ऐसी डब्बी जिसकी चार कोने होते हैं। लेकिन केसन का जो हेयर ऑयल है उसकी जो बुनियाद है वही बहुत यूनिक है, यानी कि इसकी जो पैकेजिंग है, इसके जो पैकेजिंग का आइडिया है वही सबसे मुनफरिद है। ये तीन कोनों वाली इसकी डब्बी है, तिकोन टाइप जो होती है। एहराम मिस्र के जो पैरामिड्स हैं देखे हैं आपने, तीन कोनों वाले होते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से तिकोन की सूरत में हमारी डब्बी है जिसके अंदर ये तेल मौजूद होता है। ठीक है जनाब, और दो तरह का रेंज में मौजूद है, एक 100 ml की बोतल है इसकी जनाब, और दूसरी 200 ml की, एक 100 ml की दूसरी 200 ml की। जो 100 ml की है उसकी कीमत है 430 रुपए। ठीक है जनाब, जो 100 ml में है उसकी 430 रुपए कीमत है, और जो 200 ml में है उसकी कीमत है 750 रुपए। तो अब दो हमने बनाए, किस लिए बनाए? पहली बात तो ये है कि ये ट्रायल पैक होता है, हर कोई कहता है कि यार बड़ा पैक मैं बाद में लूंगा, पहले चेक तो कर लूं कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, ये मुझे सूट करता है या नहीं करता है। तो ऐसे मेरी बहनें जिनके बाल लंबे हैं लेकिन उनके बालों का हेयर फॉल है तो वो छोटा ऑयल खरीदें, लेकिन जिनके बाल छोटे हैं, ना ही ग्रोथ होती है, ना ही लंबे होते हैं, ना ही घने होते हैं, छोटे के छोटे हैं और आगे बढ़ नहीं रहे, तो केसन का जो 200 ml की बोतल होती है वो वाला खरीदे। उसमें आपको फायदा है, किस तरह फायदा है, यानी कि 430 रुपए की 100 ml की एक बोतल होती है, तो क्या हो गया, अगर दो को इकट्ठा करेंगे तो कितने का बनेगा, 860 रुपए के दो बनेंगे। कितने के? ₹860 के। लेकिन हम आपको कितने का दे रहे हैं 200 ml, 750 रुपए का, यानी कि आपको 110 रुपए की तो कंपनी की तरफ से बचत हो जाती है। समझ आ रही है? 110 रुपए की तो नहीं देगा ना वो आपको 700 का दे सकता है, तो कितने की बचत हो गई? जब आप बड़ा पैक खरीदेंगे तो आपको 150 रुपए की बचत है। ठीक है जनाब, ये आपको जब आप 100 ml से 200 ml की तरफ जाते हैं तो आपको 150 रुपए की एक पैक के ऊपर बचत होती है। तो आजकल के दौर में महंगाई का दौर है, लोग 10-10 रुपए 20-20 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो केसन आपको जनाब 150 रुपए की बचत दे रही है बड़े पैक के ऊपर, और बड़ा आप खरीदिएगा। ठीक है जनाब, छोटा भी खरीद सकते हैं। शैम्पू जो है हमारा वो 390 रुपए का है। मेरी आवाज इस वक्त आप डेर इस्माइल खान में सुन रहे हैं, तो डेर इस्माइल खान में तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये

0: किसी से भी पूछेंगे, चाहे आप जफराबाद में, जफराबाद वालों मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत हमें हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मिल रही है, और आप हमारे प्रोडक्ट जफराबाद में मुख्तलिफ स्पॉट से खरीद रहे हैं, जैसे कि हाजी जनरल स्टोर। अच्छा जी, हाजी का आपको बताएं, ये हमारा मेन सेल पॉइंट है जफराबाद के अंदर, हाजी जर्री एंड जनरल स्टोर जफराबाद। ये पहले जगह इनकी और होती थी, अभी आ गए हैं खरोटी प्लाजा में, ठीक है। जब पहले हमारे प्रोडक्ट होते थे, आजकल उनके पास नई चीजें भी हैं, और यहाँ पर खरीदारी भी हैं, और यहाँ पर खरीदारी करने वाले तमाम बहन भाइयों का बेहद शुक्रिया। अल फैसल मार्केट जफराबाद में है, मौजूद है, तो यहाँ पर खान कॉस्मेटिक है, मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के सामने, खान कॉस्मेटिक एंड रहमान आशियाना बेकरी, ठीक है जनाब, रहमान आशियाना बेकर्स द्राबन द्राबन चुंगी के ऊपर, ये दो सेल पॉइंट है, आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो है फतेह मोड़ के ऊपर रहमान शॉपिंग सेंटर है, फतेह मोड़ के ऊपर रहमान शॉपिंग सेंटर। ग्लोबल एफएम 91 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके इलाके में ये प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेगी, तो कुरेशी मोड़ के थोड़ा सा आगे है रहमान शॉपिंग सेंटर, फतेह मोड़, यहाँ पर फहद जनरल स्टोर भी है, दुबई जनरल स्टोर भी है, तो इनके ऊपर भी आपको हमारे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है जनाब। ये बाहर के इलाके हो गए, अब आ जाते हैं बनू चुंगी की तरफ, तो यहाँ पर है जनाब बलोच करियाना, बलोच करियाना शॉप जनाब, और इनके साथ जो है सनाउला हेयर ड्रेसर है, उनके पास भी हमारा ये ऑयल वगैरह शैम्पू सब कुछ मिल रहा होता है, उनके कस्टमर बहुत ज्यादा ये हमारी चीजें बाय करते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं बनू चुंगी के अंदर। कराची कॉस्मेटिक शकील भाई, आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं, सुभान कॉस्मेटिक है वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं, गोहर है, इसके अलावा लाहौरी पीको सेंटर है, न्यू बनू चुंगी, आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। आज मुझे लगातार बोलना पड़ गया और मेरा गला भी सूख गया है, आपका सुनते सुनते भी सूख गया होगा, और मेरा जो है बोलते बोलते एनी हाउ जनाब कंटिन्यू करते हैं। शिव से चौक के ऊपर जो है जाहिद शॉपिंग सेंटर, उमर गिफ्ट सेंटर, और मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर है जनाब, आप यहाँ से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरबीसी चौक के ऊपर जनाब पहले वसीम जनरल स्टोर होते थे, अभी उनका नाम हो गया महमूद जनरल स्टोर, तो आप यहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। डेर इस्माइल खान की ये कुछ दुकानें हो गई, शोरकोट में अगर सुन रहे हैं तो हकीम किताब घर है जनाब, यहाँ पर आप हकीम साहब से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा डेर इस्माइल खान के अंदर चुगल्ला के साथ अहमर जनरल स्टोर है, साथ में मदीना वैरायटी है, ठीक है जनाब। अहमर जनरल स्टोर, मदीना वैरायटी, और चुगल्ला के साथ है फारूक जनरल स्टोर, और फारूक के साथ ही है अमान जनरल स्टोर, आप इनसे भी हासिल कर सकते हैं। कमर्शियल मार्केट के अंदर फैमिली शॉपिंग सेंटर, गोमल मार्केट के अंदर अलमक्का कॉस्मेटिक है, अल फरीद कॉस्मेटिक है, एंड शीश महल, ठीक है जनाब, इनके पास भी आपको हमारे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तो डेरा के लोग है, इसके अलावा गुलशन कैश एंड कैरी और हॉस्पिटल स्टेट लाइन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है, आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गए ग्लोबल एफ एम 91 के लिसनर्स, और उनके लिए ग्रिड रोड पर जो लोग रहते हैं, ताहा बेकर्स है जनाब यहाँ पर, ताहा बेकर्स, तो आप इनसे भी हासिल कर सकते हैं। शेख यूसुफ चौक, शेख यूसुफ नियाजी चौक पर जो है यूनाइटेड बेकर्स है, तो आप यहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं यूनाइटेड बेकर्स से, ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा सर्कुलर रोड के ऊपर A1 कॉस्मेटिक, जी बिल्कुल, ईद HBL बैंक ईदगाह जो है उसके बिल्कुल सामने है A1 कॉस्मेटिक्स, आप उनसे भी हमारे प्रोडक्ट जो है बाय कर सकते हैं, उनसे भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गए ग्लोबल एफएम 91 के लोग, सिर्फ मेरा गला सूख गया है, इतने दुकानों के ऊपर आपको केसन मिलती है भाई, देखें जहां हमारी आवाज सुनाई देती है आपको गली गली। ये मैंने आपको 10% बताए होंगे मेरे ख्याल में, 90% अभी और दुकानें हैं जो छोटी मोटी हैं, उनके हम नाम ही नहीं लेते कि वहां पर भी हैं, लेकिन ये मेन शॉप्स हैं जहां पर आपको हर जगह मिल जाते हैं। और पहाड़पुर की तरफ आते हैं तो जनाब यहाँ पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूटर है अवेस जनरल स्टोर, राहत घी एजेंसी, यानी कि जो GPO चौक है उसके सामने है, इन यहाँ से आप जाएंगे तो दुकानदार हजरात भी यहाँ से ले सकते हैं, आम लोग भी यहाँ पर जाएं और इनसे रियायत करवाया करें भाई, ये ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको तो बाजार से 50-60 रुपए ये सस्ती देंगे चीज ना करें तो इसी नंबर पर कॉल करके 03449363366 के ऊपर कॉल कराया करें कि खलील भाई ने कहा यहाँ से 50-60 रुपए कम दिया करें, आप 80 रुपए तक कम दिया करें, ठीक है जनाब। उनसे आप ले सकते हैं अवेस जनरल स्टोर, बाजार के अंदर नवीद कॉस्मेटिक, जीशान जनरल स्टोर, ताजमहल, बिस्मिल्ला एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है जनाब, इन जगह से आप ले सकते हैं। 97 को आप सुन रहे होते हैं जनाब मथुरा आबाद की तरफ भी, कोटजई की तरफ भी, तो मथुरा में वसीम जनरल स्टोर है, उसी के साथ साथ मजम वाली के इलाके में जो है हाजी रमजान जरा जो फौत हो चुके हैं, उनका सेटअप है, सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, आप वहां से सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। आगे आ जाएं कोटजई में, तो यहाँ पर है अफनान शॉपिंग सेंटर, ठीक है जनाब, वजीर आलम भाई होते हैं, यहाँ पर भी सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आगे आ जाएं जनाब रंगपुर अड्डे के ऊपर, जिसको आप 97 के लोग सुन रहे हैं, 90 पहाड़पुर एफएम, हसीब जनरल स्टोर है जनाब, हसीब जनरल स्टोर, जमील नियाजी एंड हैदर मेडिकल स्टोर, ठीक है जनाब, आप यहाँ से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गए, और डोहतर अड्डा की तरफ आ जाएं तो शेरवली कुंडी जनरल स्टोर, नईम कुंडी जनरल स्टोर, आप यहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। कुंडी किताब घर है, अलजन्नत सुपर स्टोर कोकार में है, तो आप यहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब, ये हो गए पहाड़पुर के, और डेरा के भी मैंने बता दिए। तो टांक में भाई कहाँ से ये ऑयल मिलेगा, क्योंकि नई नई कंपनी हमारी वहां पर गई है, तो अभी कम लोगों ने इस्तेमाल किया है हमारे ऑयल को, मेरे ख्याल में 100-100 लोगों ने इस्तेमाल कर लिया होगा, लेकिन ये ऑयल जो है 100-100 लोगों का नहीं है, ये लाखों के इस्तेमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके फायदे इतने ज्यादा हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो टांक वालों कहाँ से लोगे हमारा ये ऑयल, सदाम प्लाजा टांग के अंदर जैसे दाखिल होते हैं, सभी लोग जानते होंगे ट्रैफिक चौकी के साथ ही सदाम प्लाजा, जिसे पहले रमजान मार्केट कहा जाता था, वहां पर पहुंच गए तो आपको केसन की हर चीज मिल जाएगी। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां पर मंसूर जनरल स्टोर, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं अरबाब कॉस्मेटिक, उसके साथ बैठे हुए हैं इमरान कॉस्मेटिक वाले, तो ये तीनों भाई सदाम प्लाजा के अंदर मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको यहाँ से हमारी कोई चीज नहीं मिलती तो आगे जाएंगे, एक और दो प्लाजे हैं वहां पर, फैसल गिफ्ट सेंटर है, सिटी कॉस्मेटिक है, अब्दुल्ला कॉस्मेटिक, अब्दुल्ला जनरल स्टोर है, अयान कॉस्मेटिक है, कराची कॉस्मेटिक, दुबई कॉस्मेटिक, ठीक है जनाब, इन सब के पास आपको हमारी प्रोडक्ट मिलेंगी और इनके पास जरूर जाइए। नसीम है बिलाल मार्केट में, इसके अलावा वकास ट्रेडिंग कंपनी वाले भाई होलसेल का काम करते हैं पुरानी सब्जी मंडी के साथ, इनकी शॉप है, यहाँ पर आप केसन के सारे प्रोडक्ट इनसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और इसके अलावा मंसूर बिलाल मार्केट में नसीम भाई बैठे हुए हैं, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको केसन के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो है टांक में बस मुझे यही दुकानें याद है जी इनके पास है, और डबरा में भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए हैं। डबरा में आप जाएंगे तो वहां पर दुकानों से आप पता करेंगे तो वहां पर भी आपको केसन के प्रोडक्ट जो है मिल पाएंगे। केसन के प्रोडक्ट जैसे कि आज हमने जिक्र किया आप लोगों के लिए, आपके बालों के लिए बस दो प्रोडक्ट काफ़ी हैं, आपको किसी किस्म का कोई कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों को प्यारा करने के लिए। ये इतने नरिशफुल हमारी ये जोड़ी है जिसको हम केसन जोड़ी कहते हैं, जो शैम्पू है वो कंडीशनर पर मुश्तमिल है और विटामिन पर मुश्तमिल है। शैम्पू के अंदर डिफरेंट विटामिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन विटामिन B5 और विटामिन B3 जो होता है, ये दोनों बहुत ही कमाल के विटामिन हैं। जिस तरह विटामिन ई को कहा जाता है कि स्किन की जान होता है, विटामिन सी को कहा जाता है कि ये आपकी चेहरे की जान है, स्किन की जान है, तो विटामिन B3 और विटामिन B5 ये निचोड़ है हमारा शैम्पू इन दो विटामिन का। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये विटामिन खूबसूरती की सूरत में आपके बालों के ऊपर नजर आते हैं कि ये शैम्पू ऑयल के साथ मिलकर आपके बालों को कितना प्यारा बनाता है। इस वजह से हमने इसकी जोड़ी बनाई है और इसको हम कहते हैं केसन जोड़ी, ठीक है जनाब। आज भी मुझे कहाँ से बहुत दूर से इस्लामाबाद से कोई इलाका था जहाँ से एक भाई ने मैसेज किया हुआ था, पिक्चर भेजी ऑयल की और कहा कि ये आपके पास मिलता है, मैंने कहा जी बिल्कुल हमारी कंपनी का है, कहते यार इसके ना दो पैक भिजवा दें विद शैम्पू। तो मैंने कहा आपने कहाँ से सुना था इसके बारे में, कहते हैं ये कोई हमारे जानने वाले थे, उन्होंने हमें गिफ्ट भेजा था और इससे बिल्कुल हेयर फॉल रुक गया, कहते हैं कि मेरा बिल्कुल जो हेयर फॉल था ना वो रुक गया, और मेरा बड़ा मसला यही था कि मेरे बाल गिर रहे थे, तो उन्होंने आज हमसे मंगवाया हुआ था ऑनलाइन। तो भाई ये वो प्रोडक्ट है जो जहां भी गई है ना, अगर ये टांग के अंदर मौजूद है, टांग के लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं यकीनन इस प्रोडक्ट के हवाले से इतना इसके ऊपर मुझे एतमाद है, यकीन है कि ये प्रोडक्ट हमारे जिस इलाके में भी गई है ना वहां से इसकी वापसी नहीं हुई है कि किसी ने कहा कि भी वापस ले जाओ इसके रिजल्ट नहीं है, वापस ले जाओ इसका कोई वो नहीं है, वहां पर दस से बीस, बीस से चालीस, चालीस से अस्सी, अस्सी से 160 हुए हैं लोग, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई होंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। अभी भी हमारे टांग के अंदर डेरा पहाड़पुर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़पुर में तो अगर एक मर्दमशुमारी कराई जाए ना पहाड़पुर के अंदर, तो मेरे ख्याल में कि हर दूसरे घर के अंदर आपको केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे, केसन का ऑयल और शैम्पू। इतनी बढ़िया सेल है हमारी पहाड़पुर रीजन के अंदर, इतने ज्यादा लोगों की मोहब्बत। इसी तरीके से डेरा में भी, टांग में चूंकि अभी हम नए नए गए हैं तो लोग ऐसा ऐसा से इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि लोगों की पहली चॉइस केसन का ऑयल और शैम्पू होगा टांग के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो चीज है, ये उस वक्त तक आपसे दूर है जब तक आप इसे यूज नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप इसे घर लेकर आ गए, फिर हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि कितनी पाए की ये चीज है। और ये इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, ये तेल नहीं सोना है, ठीक है जनाब, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये तेल नहीं सोना है, ये जुमला हमने इसके ऊपर ऐसे नहीं लिखा है भाई, ये तेल नहीं सोना है। तो हमने इसके अंदर कुछ डाला है, ठीक है, इसके हमने कुछ रिजल्ट देखे हैं, कुछ लोगों के शुक्रिये और उनके ग्रेटफुल मैसेजेस हमें मिले हैं, कुछ लोगों ने हमें अपनी पिक्चर्स भेजी हैं, ठीक है जनाब। एक हमारे यूजर हैं, नाम मैं उनका नहीं बताना चाहता, उन्होंने अपनी चोटी की पिक्चर भेजी, इतनी बड़ी, कहती कि एक वक्त था कि गर्दन से नीचे बाल मेरे नहीं जाते थे, और ये 2 साल मैंने जो है ना, कीमती साल मैंने केसन को दिए और केसन ने मुझे ये खूबसूरती लौटाई है बालों की सूरत में, कि इतनी बड़ी चोटी, गुत जिसे बोलते हैं ना, इतनी मोटी, रस्सी की तरह मोटी गुत बनी हुई थी, यानी कि इतना बालों को स्ट्रांग और मोटा करने वाला और सेहतमंद करने वाला ये ऑयल और शैम्पू है। तो आपकी बालों की खूबसूरती तब तक आपसे दूर है जब तक आप केसन से दूर हैं, आप केसन के इस ऑयल से दूर हैं। जिस दिन ये ऑयल आपके घर में आ गया और जिस दिन से आपने इस ऑयल को लगाना शुरू कर दिया, आपके बालों की किस्मत उसी दिन से बदलना शुरू होगी। और मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि 4-5 महीने वेट करेंगे, नहीं, एक ही दिन, एक ही रात आप ऑयल लगाएं और अगले दिन धोकर फील करें इसकी, इसकी ब्यूटी फील करें। एक ही रात के अंदर आपको सुबह बाल अपने नर्म और मुलायम, रस्सी की तरह सख्त अगर बाल है ना, शैम्पू से अच्छे से, शैम्पू मतलब केसन शैम्पू से धोके जब सुखाएंगे तो और हाल फिरेंगे, तो आपको एक ही रात का ये जादू दिखाएगा कि 1-8 घंटे जब आपने ये 17 जड़ी बूटियों की अमेजिश को लगाया है ना अपने बालों के ऊपर, तो उसने 8 घंटे बाद आपको क्या रिजल्ट दिया है, ठीक है जनाब। ये रिजल्ट आपको हमारा ऑयल सिर्फ 8 घंटे हमें दे, 8 घंटे तक ये ऑयल अपने बालों के अंदर अच्छे तरीके से लगा कर रखें, ठीक है जनाब, और 8 से 7 घंटे बाद केसन शैम्पू के साथ अपने बालों को धो लें और फिर उसके बाद फर्क को महसूस कीजिएगा, ठीक है जनाब। और फिर अल्लाह को जान देनी है, बताइएगा कि एक ही रात के अंदर इसने अपना जादू दिखाया है। ये जो हम चीखते हैं कि ये सबसे सुपीरियर ऑयल है और इसके अंदर 17।
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: जमजम हियर शैम्पू एंड जमजम हियर ऑयल, जमजम हियर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی، ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی، نو دملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.

बिल्कुल दोस्तानो राजू दे तासो मैसेजुनो तरफ ता नो बिल्कुल गण मैसेजुनो रा गले दी दोस्तानो दा खबर बार बार जकाउ चूंकि दे मुजा प्रोग्राम देर ज्यात खलक अर वी देर ज्यात लिसनरशिप मुदा ओ मैसेजुनो कल उजदी नो कतासो मैसेज जकल मुख्तसर होए नो दाबा सिर्फ औ सिर्फ वजह दाइच दे वख कमी बई नो बिल्कुल राजू दे तासो मैसेजुनो तरफ ता

0: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बरसूटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल, अवेला जी सुनत अमल ले।
3: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چتاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
2: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى سیبنا پل علاج ترلاسه کولی شي۔
3: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولی شي
2: 0319 55 23 404۔

0: Radio Ama Network News and Information Station. Welcome to Radio Ama 88.4.
1: You are listening to Radio Ama Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: जाती है?
1: जी हाँ, अच्छी तरह।
0: फौलाद को खूब जर्ब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए

0: ओके जी, लेट्स सी फर्स्ट कलर ऑफ द शूज। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। कुर्बान सुख दिकम से है ना?
1: कसम दिकवना
0: जी, कसम दिकवना, कसम बैसरंगे शे जोड़िए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह तब वो तो शे जोड़े कर अर्दन इजवाल भाई
0: मने ने जी दला तला लाख लाख शुक्र दाओ बिया दी तुसी दुआ गाने दी तो खुश है का ना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: सही से सिवाय के ना जवन वक्तों में से जीरो सरंगे रहो मुंदी शे दी के ना
1: इसी खंडवर तेरी जी माशाल्लाह तब वो
0: है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुम अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम और वे
1: यार बस प्रोग्राम तनासी प्रोग्राम और
0: हां प्रोग्राम सरंगे इधर में लगी शे
1: प्रोग्राम खुद ही फिर हमें लगे कि खुद ही वक्त न देते पे इंतजार है तात घंटे को हो तो जवाब न मिला ही जी।
0: ना ना बस तात जवाब मिले भी शिवाश कुर्बान या है कि नहीं सिसे जवाब घोड़े
1: नो लकबु को तास से घंटे को लो हमक तो मौका न रात बला।
0: अच्छा अच्छा मुक्कन न देते मिले दिले से उस मुकादर से मिला सुला कहने से
1: जी जी उस बिल्कुल मिला उस।
0: अच्छा अच्छा चरता रहा तो वे चेनो टेंशन प्रोडक्ट सिस्टम मिलावे कि नहीं से मिलावे चे तो जरूरी थी कहना
1: यार जी मा हुई हो घंटे उसमें सिदर वकला
0: आहा
1: लका दे ता गर्मी वाली दाने न रहो है कि खारज।
0: आ वाह वाह द द दानो दे पर ऐसी
1: जी जी दे दे पर बता सही।
0: आओ बिल्कुल उस्तादा जी, दा रोजाना से प्रोग्राम शिव आए से मशुमानो ते पुरे चिकम दे के न दी मुशा नुटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पाउडर मिलावेशी आओ तो दीने लवासी चिकम घट सड़ी दी जी आओ दे पर दी मुशा नुटेंशन हर्बल स्प्रे मिलावेशी। और अगर स्प्रे चिकम दे पजी से मंदे वो के जिस्म दे लगी दिला हुई जी या दीने लो दुनिया दर मन खतिल विचार ते जहम जुड़ शोई बिल्कुल पगी लगा हर्बल स्प्रे दो शादो
1: دی
0: وعلیکم السلام ڈیر من سے خوشحال ہے۔

ना स्पेशल ढेर अक्षले ढेर दर्दनाक देसी वाव रे शान दजड़ा जड़ बस्तर के वाव रे सी पगजुन सड़े ऐसे जड़ बस्तर के खाले गुरे सी दरड़ पगजुन वाव रे शान हाँ हाँ ढेर शान लाल शेर सास

0: किसी रीति गुरु ने जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम नजमान भाई, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, तू सुना सी, तू चंगा वादा है?
1: अरे शुक्र है, अपना हाल दे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो चंगा वादा है से।
1: हां तौला जाल करे ला पिया कुछ कर।
0: हां जी अतुला बेरा मैं तेरे को सुनार दे रहे सी, मैं तोड़ा आवाज भी सी आन दे सी।
1: चंगे
0: बिल्कुल, मैं चंगा वादा है, तू सुना, तू चंगा वादा है ना सी? आज तो चंगा मौसम है, आज तो चंगा मौसम है जी। अच्छा तुम्हें ये दिखा कि कुतुब कलोनी विच बारिश लगती पी है जी?
1: हां बारिश वजदी, थोड़ी थोड़ी बारिश है, ज्यादा नहीं है।
0: अच्छा थोड़ी थोड़ी बारिश लगे पी है जी?
1: हां रिम झिम लगी पे, रिम झिम पे पता लग गई
0: नहीं लगदा ना जी?
1: रिम झिम पड़े फुहार तेरा मेरा नितदा प्यार।
0: हां हां बस इंजॉय कर छा ना, बिजली तो नहीं होंगी ना जी? हाँ बिजली नहीं है जी, बस मौसम इंजॉय करे सो आज।
1: हां बिजली तो है, बिजली
0: हाँ ऊन आई ना जी, ऊन गई है जी, ऊन आई है जी।
1: हाँ गई है तो वत आ गई है रहना।
0: अच्छा अच्छा वत आ गई है जी। आज बारिश है ना जी, बारिश को बिजली का पता नहीं लगती ना जी?
1: हाँ
0: हाँ बहाने मंग दे, मसले करे देना, फिर आग देना जी की लैंड शाड़ती गए जी।
1: हाँ
0: हाँ बस ये बहाना मांग देना जी। नुकसान थी गए सी, लाइन शॉर्ट थी गए सी, और हम बढ़े लाइन को बढ़े
1: सी,
0: ये गाल है जी, ये गाल करे सी। फिर मेरे को गुस्सा आंदी है ना जी?
1: अच्छा
0: मेरे को गुस्सा फिर आंदी है, तू कितनी को गुस्सा नहीं आंदी ये भी गाल पे? मैडम मैं कमजोर है ना जी। मैडम मैं कमजोर
1: है,
0: गाल तो है लेकिन मैं कमजोर थी कहने सी, बादाम बादाम नहीं मिल रही है ना जी? मैं कुछ करे ना कि भाईजान बादाम शदाम कितने मिल बन जे ना?
1: हाँ
0: तो फिर गुजारा थी सी।
1: अच्छा
0: हाँ ना
1: ठीक है, बादाम बादाम तो मिल दें, बादाम तो बाजार बहुत पहनते रहना,
0: बाजार तो वो ये मंजे कुल जो बिरा था ना वो आगते ना कि बाजार कुल जो मिल देना सी वो दो नंबर है।
1: अच्छा
0: वो काम नहीं करें दे ना सी, मुफ्त जो ओन दे ना वो काम करें दे।
1: बिकार
0: बिकार नहीं सियाण दिखा, बिकार क्या होंगे
1: बिकार नहीं, रोटी खाने आदमी कर
0: माशाल्लाह मेरे तबीयत रोग है, थोड़ा रोग है माशाल्लाह, मैं तो चंगा वदा बिल्कुल फिट फिट फिट गए चंगा वदा जी। मेरा तो इतना स्टेम नहीं होता ना सी, मेरे तो इतनी सराई के नहीं है, मेरे को पता नहीं लगता ना सी कि मैं तुआड़े ना सराय के बीच गाल करें। मैं तो ला बेरा देना ले जाना प्रैक्टिस करें द, प्रैक्टिस करें द बताएं ठीक है ना? तो ला बेरा दे सुन सर आई के ऐसे।

अच्छा इरफान फरियादी सॉन्ग प्ले करो प्लीज भाई, इरफान फरियादी इंशाल्लाह। और कपले मेरे को वेकेशन है और मंगल पौरसीमा प्रोग्राम इबारा ना साढ़े एक बजे पुरे जरूर भी बैठे तपले का शादो उस न रजी खूब ढेर शादो वो उर्दू उर्दू खसारा खसारा वाला शेर तो सुना कोशिश कर।

0: बच्चे मेरे घर में सब ऐसे डरते हैं, जो बच्चे अपने से जो बच्चे अपने से बड़ों को नेम से बोलते हैं, सीधा कान पकड़ कहते हैं कहते हो कि तमीज से को ये आपसे बड़े हैं अमर वो मले आए कह तहसे नजमा तमाम ऐशा एक दर अब आए तूफान शुरू से ले
1: योजन चिलाड़ शी गुलाब गुलाब ओ पस परान शीस कना
0: ओ भाई सम तेज बारान दे वे जान चिलाड़ शी गुलाब पटुल में वीर जोड़ कर वे जान बेफिक्रा ओ समुश
1: वो खतरे
0: इशू हो माय सिमेस नदर सी सम गुसर अजी करुणा बरतलना नदर सी दिलान बिटिन ओ सरागे खुरेशा جب شیر نواد مینوم یو دو آشان